0: घैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि घैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437।
1: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

सूचना नेटवर्क CIM. सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM.

रेफ्रिजरेटर जित्ने मौका। साइड बाई साइड र मल्टीडोर रेफ्रिजरेटर किन्दा इन्डक्सन निशुल्क। फ्रन्ट लोड वासिङ मसिनमा 6 केजी, टप लोडमा 4 केजी र सेमी अटोमेटिकमा 2 केजी सर्फ एक्सेल निशुल्क। डिस वासर किन्दा 2 वटा वासिङ ट्याब्लेट निशुल्क। आइडिया दसैँ